0: Baiklah warga, sampai di sini akhirnya Pesona Mandalika untuk Anda hari ini. Terima kasih untuk yang selalu bersama kami di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana pamit saja warga untuk hari ini. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलू बोलू प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, ओ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: सोना सोना
2: मंडलिका.